जपुवंसी सेवकमावे सिंहा उपल जानिए गज्जन उपल सत गुर भावे मल सिंहा विच आखिए भगीरथ काली गुण गावे

माथे आजूनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे आकरमंगा परमंगा गंजे आलेखे पुजंग प्रयार शांद नमस्तुल वरणामे समस्तुल वरणासे या गंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं वैबुद्धे समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं वरणासी सुधर्मं वैबुद्धे सदा सहितानंद सतरंग वरणासी करीमुल गुनंदा समस्तुल निवासी अजाए बा बबूते गजाए बा कनी में हरियं करियं करीम दरही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वंभव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते सर्व

वेदिना का खाना सिफती सार न जाननी सदा वसै शैतान गदहों चंदन खौली है।